0: 19th Street, Northeast Calgary, Calgary Carpet Empire. Phone number 403-510-1515, 2935-19th Street, Northeast Calgary.
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसे भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तों लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
2: ग्रोसरी खरीदने लिए हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव
3: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
3: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
3: छठी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222 अपने घर दा दूजा ना आया सुकून ते कनाडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती
2: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ
3: वधिया घर खरीदना है पैसे बचाउणे ने सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल
2: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल
3: घर खरीदण ते बेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस
2: ਜੋਗ ਰੀਅਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-617-1868
3: ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandeep.realtor
2: ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 403-617-1868

रेडियो सरसंगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन सोमवार मई महीने की 25 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ होगा। 4:10 हो रहे हैं जी। इस वेले 8 बजे अमृत बराड़ जी प्रोग्राम पेश करनगे। 9 बजे पंजाब तो जतिंद्र पन्नू जी नाल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ये साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज दे इस प्रोग्राम विच असीं बहुत सारियां खबरां पेश करनियां ने, चर्चा करांगे खबरां ते नाल मौसम की भी गल करांगे। अज का सवाल भी होगा तो प्रोग्राम विच अज खबरां बहुत सारिया ने, जिवें कई बारी हुंदा ना कि वीकेंड ते ज़्यादा इकट्ठियां हो जांदियां ने खबरां, जमा खबरां ते वड्डियां खबरां, उह सारियां प्रोग्राम दे विच असीं आप जी नाल शेयर करन दा यतन करांगे। तुसीं सुणदे रहो प्रोग्राम, इस विच चंगियां माड़ियां इंट्रस्टिंग ते होर खबरां होणगियां ते प्रोग्राम विच सवाल भी जिहड़ा असीं सांझा करांगे।